0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो
2: मन लुगा फ्लो
3: लुगा फ्लो मूव जोश मन परफेक्शन
2: चिकी कन्नू
3: क्या तेरा
2: बोला बीट
3: मिया माई
2: लांगो इन